ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहन निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लावह, बिखम नदी जाए तरणी।

अहन सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिया।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: उचारी है फिर बाबे ने

हर हर हर। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है, ये अहं भाव रहता है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है, चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है, ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हौमें एहा जात है, हौमें कर्म कमाए, हौमें एही बंदना फिर फिर जौने पाए। हौमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं, जैसे असी वेखदे हां हाथी विच कामरोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्टि रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन दा कारण बनते ने, ये रोग दुख दा कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता
ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है।

उतना अहंकारी होगा। एक उर्दू का महान शायर इसमें एक होर ढंग भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहो कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इत सारे भूल के पागल हुए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है, नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करम, इक ना नाद ना बेद। इकद नो न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत न सिद्ध अक्कल सिर अक्षर का भयो न लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं,

0: ऐसे धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल घर जो बिन गुण गर्व ग्रंथ असली खोते ने, अहंकार भी पंड चुकी कर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते खड़ा होंदा, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाह मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दी निगाह मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेड़े, तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और किया तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान, और खलड़ी दा मान, इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा परस मानक देहं मलीनं, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मांस खलड़ी, अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है, फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब कुछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कित, उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तो धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, हूं त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हूं त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जीरा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हरनाथ कुछ ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हां खुदा, कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उस दे सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तू है तू है तू है तू है, अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है इसने भगवान का रूप बना देता, मैं हा मैं हा मैं हा ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है, भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देख जिसदिया सारिया क्रियावां देख भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, कि तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हाँ। अहंकारी की सारी साधना है मैं हाँ मैं हाँ, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है तू ही है तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं, बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार अज राह चोनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, ये किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ दिया मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है, शायद उसनू मखलूक दे कदमा दे भी जो है खा ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों दे सिर दे उत्ते ही होंदे, सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है, इस वास्ते कहंदे ना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा के विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार को तोड़न वास्ते है, पर अहंकार बड़ा चलाक है। धार्मिक ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤੀਰਥ ਬਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ।

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी हो, कुछ बिगड़ना भी ना हो, हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने ही जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाली वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार आंदा है, इसे दुश्मनी बढ़ते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बनिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सवाए दुखां दे सूल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है,
दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया, आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है, जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन कीना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है, एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई, बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजनी है। राजा दर्शना लई आया है, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपदे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेट है, चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के इस जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदिया बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है वी इत्थे कल्लियां बैठे हां तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो,
फिर वापस आ जाते हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे के चले हाँ तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियास ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारिया की निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारिया दियां निगाहां मेरे ते अज ये निगाहां फिर गई ने अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेखदे ने खैश जिस घर विच जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने सोना चोला पहने होया मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा किया चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दा। खैर माफी मंगण लग पाया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया है तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे से शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या करने ने ज्ञानी ने रह गई इस चोले की गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे उची वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा है।
خیر اس گھر تو جیوں نکلے یہ بیراگی سادھو پھر معافی منگدا ہے مترا مینوں اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے سی پر نکل گئی ہے گل تو سہن کر لے برداشت کر لے ہوں میں نہیں کہاں گا تیسرے گھر گئے آؤ بھگت ہوئی بٹھائے گئے پر وہ چولا تیسرے گھر دے بھی سارے منکھاں نوں پربھاوت کر رہے ہیں نر ناری بچے سب پربھاوت اسے سادھو نوں دیکھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سنت جی یہ نال کون آئے نے یہ کہڑے سنت نے تو ہوں تعارف کراندا ہے میرے بال سکھا متر نے جتیشور نے تپیشور نے گیانی پرش نے پر رہ گئی انہاں کپڑیاں دی گل اس چولے دی میں اس دی گل نہیں کرنے نہ گل کر کے بھی کر گیا جد اس تیسرے گھر تو رخصت ہوئے کٹیا چ پہنچے اس مہمان سادھو نے اس دوست سادھو نے چولا اتار کے اگے رکھ دیتا آخیا تین دفعہ تو ننگا کیتا ہے اے لے اپنا چولا ہوں چوتھی دفعہ میں آپ ہی اتار دینا تین دفعہ تو اتروایا ہے تین دفعہ تو نگن کیتا ہے اہنکاری اپنے متر دا بھی مان سنمان برداشت نہیں کر سکتا اہنکاری اپنے گرو دی مہانتا بھی برداشت نہیں کر سکے گا وہ متر نو چھپائے گا ماں باپ گروان نے تے انہاں نو پچھے سٹے گا ودیا گرو ہے یا ادھیاتم گرو ہے اس نو بھی ہنکاری چھپان دی کوشش کرے گا پچھے سٹے گا مہاراج دی بانی بڑا سندر فرمان کر دیے جو گرو گوپے اپنا تے نر برے آری یہ بڑے برے پرش ہوندے نے ہنکاری گرو نو بھی چھپاندے نے کیوں پھر میری میں میرا وڈپنا پھر کتھے تے متر نو چھپاندے نے پتر نو چھپاندے نے اگر گنوان ہے ماں باپ نو پچھے سٹتے ہیں صرف اپنے آپ نو ہی اگے کرنا انہاں دی زندگی دا لکش ہے اور یتن کوشش یہ بھی آدھی ہے رب نو بھی پچھے سٹیے پرماتما نو بھی پچھے سٹیے اور ناکش نے پچھے سٹن کی کوشش کی تھی سی نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندا ہے خدا میں خود خدا ہاں تو اہنکار اپنے تو وڈا کسے نو بھی نہیں من سکتا اہنکار جیندا ہے میں آشرت تو تے بالکل بھول جاندا ہے ایک اردو شاعر نے بڑی سندر نظم لکھی ہے بکرے دے بول نو اگے کر کے کہ بکرے دا بول ہے میں اسے نو آدھار بنا کے اس شاعر نے بڑی سندر کلپنا کیتی ہے فخر

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वज दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गई सुट दतिया गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गई कम विच वर्तिया, केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज दे ने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है।
0: ले गया नदाफ उसे धुनकी बनाने के लिए,
1: ये आंदरा ही रह गई सुन।

नदा फुसे धुन की बनाने के लिए, जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते हो, नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रुई पिंजी जांदी है। जरब

जो खुदा दे रस्ते ते चल दे ने, रब दे मार्ग ते चल दे ने, जेड़े सुनीदन के मर्दां ने राहे खुदा, दिले दुश्मना ना कर दंद तंग, वो दुश्मन दे दिल नूं भी जरब नहीं पहुंचांदे, वो दुश्मन दे दिल नूं भी नहीं तोड़दे, जो रब दे मार्ग ते चल दे ने इतने कोमल होंदे ने। सुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा, कहिंदा मैं सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने ओ दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचांदे। सुनीदम के मर्दां ने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग, तुरा की मुयस्सर शबद ई मकाम, के बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग, तैनू ए रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया, तू ते भरावां दे दिल नूं भी जरब पहुंचांदा, तू ते अपनिआं नूं भी चोट पहुंचांदा, तू ते अपने परिवार नूं भी चोट पहुंचांदा, अपने भरा नूं भी चोट पहुंचांदा, पड़ोसी नूं भी चोट पहुंचांदा। मैं ते सुणिआ जो रब दे मार्ग ते चलदे ने ओह दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचांदा। दुश्मनी एक ऐसी अग है जेदे च मनुख दे सारे रब्बी गुण जल के सुआह हो जांदे ने। इनू तात कहिंदे ने, तात अग्नि, पराई तात, पराई दुश्मनी अग। ते अग दा ते कम है कुछ ना कुछ जलावेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फैसला, जिस दे अंदर तात पराई होवे, मैं सतगुरु दे बोल थोड़े सामने रख रहे हैं, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। क्यों? जिस दे अंदर पराई तात आउंदा है, जिस दी अंदर दुश्मनी है पराई, दुश्मन दा हर वक्त बुरा मंगेगा, भला नहीं मंगेगा। इस हद तक भी बुरा मंगेगा, मेरी पग लेंदी है कोई गल नहीं, दूजे दी लेनी चाहिए, भावे मेरे सिर ते नहीं रहिंदी ते ना रवे, मेरा घर बने भावे ना बने दूजे दा ठहना चाहिए, मैनू इज्जत मिले भावे ना मिले दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिए है, इनू पराई तात कहिंदे। मैनू नफा होवे भावे ना होवे दूजे नू नुकसान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मेरे सिर ते पग भावे रवे भावे ना रवे दूजे दी ते लैनी चाहिए, इनू कहिंदे पराई तात। जिस दे अंदर पराई तात है वह पराया बुरा मंगदा, हर वक्त पराया बुरा मंगदा। ते गुरबाणी दा यह फैसला, जिहड़ा पराया बुरा मंगदा दूजे नूं बुरा देना चाहता है, तो उसका ही बुरा हो जाएगा जिहड़ा दूसरे का बुरा मंगता है। पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर दूजे का बुरा तो हिरदा मंगेगा, क्योंकि दूजे नाल दुश्मनी है, दूजा वैरी है। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे न होवे भला। पराई तात विच रब्बी गुण सड़ जांदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, सारी पराई तात हिरदे चो निकल गई है। किस तरह निकल गई है? बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पास। पराए साड़े नहीं ने, पराई ईरखा नहीं है, पराई जलन नहीं है, पराए साड़े अंदर नहीं ने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक गोष्ठी लिखी है, सामने आ गई है मेरी, थोड़े सामने रखते हैं। परवाने दी ते जुगनू दी। जुगनू उस इलाके च बहुत आते हैं जिथे बारिश बहुत पवे। अजकल आसाम देच, भारत देच बहुत देखे जा सकते हैं। रात नूं मैनूं सफर करने का मौका मिलिया ते सारा जंगल इंज दिसे जिमें तारे जमीन ते आ गए ने, चमकदा होया। जुगनू ही जुगनू सन।

सम्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्मां दी कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इस नूं ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसे प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहने ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया दे जिथे इंसाफ मिले सारे अरब दे ईरान अफगानिस्तान ते भारत दे उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे, जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे ते शायद मेरी इतनी जानकारी ना होवे, पर भारत

सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसके दरबार विच की आता है, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उसके दरबार विच कर्मां दी विचार आती है, मनुख की शकल सूरत की नहीं, मनुख दे कर्मां दी। इस नूं खोलण तो पहले मैं अर्ज करा, इस पृथ्वी दे उत्ते जिस ते असी रहिंदे आ, दो तरह की दुनिया धर्म ने मनी है, भोग भूमि कर्म भूमि। एक ओ जीव ने जो सिर्फ इंज कह लो जीवन बतीत करन लई आए ने, भोग भोगन लई आए ने, खा लेना है, पी लेना है, सो लेना है, शरीर की जरूरतों की पूर्ति कर लेनी है, बस पशु जगत भोग भूमि। मनुख नूं आख्या गया है ये भोग भूमि दे नाल नाल कर्म भूमि है, ये कुछ भोगण दे नाल नाल करन लई आया है। इस वास्ते सिर्फ भोग भूमि नहीं है, भूमि कहने धरती नूं, पशु की ने भोगां दी धरती, मनुख की है कर्म भूमि। इस वास्ते साहब कहते कर्म भूम में बोवो नाम, ये कर्म भूमि है। मनुख कर्म भूमि है, पशु भोग भूमि है। पशु अपने कर्मा अनुसार विकास नहीं कर सकता, इस तरह दे ना उसके शरीर की बनतर है, ना ही इस तरह उसके मन की बनतर है। ओ, विकास कर्मां दे उत्ते असवार होके नहीं कर सकता, अगां नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव दे मुताबक उसनू अगां तोरदी है। इंज कह लो पशुआं दा विकास प्राकृतिक है, परमात्मा दी मर्यादा अनुसार है। तो ओ मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करदी, कम करदी है। मनुख नाल परमात्मा दी स्वतंत्र मर्यादा कम करदी है, भी इत्थे उसनू स्वतंत्रता दे दईए, तेरी मर्जी है तू की करना है। मनुख नु कर्म दी छोट दे दी गई, एक कर्म भूमि है। इस धरती रेच जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदला खेत, जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली रेच उसका फल पवेगा, एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नु, तो सतपुरशा ने ब्रह्म ज्ञानिया ने कहा खुल भी ते तेरी दिती हुई है, साडा की साडे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए साडे कोल की है, करन करावन वो आपे है। जे साडे कोल स्वतंत्रता भी है तो उसकी दिती हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे है, पर उसने सानू खुल दिती है। तू सच भी बोल सकदा है, झूठ भी बोल सकदा है, अगां भी जा सकदा है, पिछे भी जा सकदा है, उपर भी उठ सकदा है, थल्ले भी जा सकदा है, इतनी खुल दिती है। पर चूंकि खुल उसे दी दिती हुई है, तो जिन्हां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान घटत होया उन्होंने कहा भी ठीक है, खुल तो दिती अगे जाण दी, पिछे जाण दी, सच भी बोल सकदे हां, तेरे नाल जुड़ भी सकदे हां, तेथों दूर भी हो सकदे हां, और खुल ते तेरी दिती हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे ते तेरी खुल करके दूर हो गए तेथों। इस वक्त साडे कोल की है कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ विच आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर दे उते बोलदे ने ना, आम लोगों की वह शिखर नहीं आती, उन्हां दे खड़े होण दा तल कुछ होर होंदा है, और जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वह तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहिंदे कुछ ने जगत समझदा कुछ है, यह भी मैरज करते हैं। महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुआ ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया है? तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ये आख्या जाता है कर्म

0: सतगुरु कृपा बख्शिश कर।
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी।
2: So the Musa, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: पात्रया रूपाद
1: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
0: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे
1: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा
1: मिथ्या बास लेत विकारा
0: भूते मिथ्या सब भये
1: सफल दे नानक हर हर नाम लये
0: व्यर्थि सात की आरजा
1: साच बिना कह होत सुचा
0: व्यर्था नाम बिना तर अंध
1: मुखे आवतता कह दुर्गंध
0: फिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाये
1: एक बिना ज्यों खेती जाये
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
1: कृपण के निरार्थ दाम
0: धन तन तेज अंधे कट बस्यो हर नाऊ
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहते अवर कश अवर कमावत
1: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत
0: जानन हार प्रभु प्रवीन
1: बाहर पीक न काहू भीन
0: अवर उपदेश है आप न करे
1: आवत जावत जन्म मरे
0: जिसके अंतर बसे प्रभाप
1: जिसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता
1: नानक उन जन चरण पराता
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे मन
0: आप करत नबेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: पाप सियान सकल ते रहत
1: सब कुछ जाने या तमकी राहत
0: जिस भावे तिस लये लड़ लाए
1: शांत अंतर रहा समाये
0: सो सेवक जिस कृपा करी
1: निमक निमक जप नानक हरी श्लोक
0: काम क्रोध अर लोभ मोह तिस जाए अमदेव
1: नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी
0: जे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे
1: जिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जे प्रसाद सुगंध तन लावहे
1: जिसको सिमृत परमगत पावे
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
1: चाहते आये सदा मन अंदर
0: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आठ पहर सिमर उत सरसना
0: जे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ते आई है ध्यान जोग
0: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
1: जिसे त्यागत अवर लुभावे
0: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: मन आठ पहर ताका जस कवि जय
0: जे प्रसाद तुल सब पू मान
1: मुक्ता को जस रसन बखाना
0: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जगत दरगाह मान पावे
1: नानक पत से ती कर जावे
0: जे प्रसाद अरो कंचन देही
1: निबला बोत सराम स्नेही
0: जे प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
0: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
1: मन साल साल सिमरो प्रभु उच्चे
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
0: जय प्रसाद असवर सवारी
1: मन तिस प्रभु कभू न बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राग प्रय प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सत्य सहते आये
0: इसे ध्याय जो एक लख है
1: यहाँ उहा नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: जिस प्रभु को सास सास तारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: प्रभु सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक
0: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जे प्रसाद पेख विस्माद
0: जे प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जे प्रसाद परम गत पावे
1: जे प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जग
0: जे प्रसाद तू प्रकट संसार
1: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप
1: जे मन मूढ़ तू ताको जाप
0: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: इसे जान मन सदा हजूरे
0: जे प्रसाद तू पावे साच
1: जे मन मेरे तू तास राज
0: जे प्रसाद शक्ति गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाई जपे सोनाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए प्रकाश
1: प्रभु दया ते कमल विकास
0: प्रभु सुख प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मतूतन होए
0: सर्वन धान प्रभु तेरी माया
1: आपो कछु न किन्हू लया
0: जत जत लाभ हो तित लगे हर नाथ
1: नानक इन के कछु न हाथ श्लोक
0: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कर समुखता होए
1: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी
0: साध का संग मुख उजल होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध का संग मिटे अभिमान
1: साध का संग प्रकट है सुज्ञान
0: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब होत नबेरा
0: साध का संग पाए नाम रतन
1: साध का संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वर्ण कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
0: साध का संग अगोचर मिले
1: साध का संग सदा प्रफुल्ल
0: साध का संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध का संग मनोहर बैन
0: साध का संग न कथूं पावे
1: साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साध के संग माया से भिन्न
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग किस्सो नी बैर
1: साध के संग न बीगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नाही हों ताप
1: साध के संग तो जैसा व्याप
0: आपे जाने साध पटाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग न कभू पावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस अगोचर लहै
1: साधु के संग अजर सहै
0: साध के संग बसै थान ऊचै
1: साधु के संग महर पहुंचे
0: साधक संग दृढ़ सब धर्म
1: साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साधक संग सब कुल उधार
1: है साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
0: साधु के संग सो धन पावे
1: जिस धन ते सब को

0: सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा मन सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदाखे लाख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते हैन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वडियाई जा वड्डा ना वड्डी वडियाई सचदा वड्डी वडियाई निचल थां वड्डी वडियाई जाने आला वड्डी वडियाई जा निचल थां वड्डी वडियाई जाने आला वड्डी वडियाई जा बुझे सो भाव वड्डी वडियाई जा पुत नरदात वड्डी वड़े जा पिया नानका नकथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एक जग सचे की है कोठड़ी सचे का विच वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मी करे विनाश इक ना पहाने कट ले इक ना माया विच निवास ए पियाक न जापी जे किसी अने रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी।

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवैत बंदी वेखण को देदार हिंदू साला ईसा।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसण कूड़ सोना कूड़ रूप

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत है, सर्व शब्दं एक सर्व

अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही नैण जिन पथ अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ने लगा रब से देखने विचार रंग से रंग रूवे चुप्पी कर जाए प्रवाह नाई किसी से री बात सचिना दरवा

एक ने ही चाकरी जितबो कसम ना जाए नानक सेवका डी गए जे सीधी कसम समाए पौड़ी नानक अंतन जापी हंग हर ताके पार आवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरें एक तुई चढ़े बिसी यार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया।

आप ही गुरु रूप हैं ते आप ही सारे जीवन विच व्यापक हो के सेवक भी आप ही हैं, क्योंकि तेरे तो बगैर कोई होर चीज है ही नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। तेरे तो बगैर जरा जरा च ते परमात्मा तू आप ही व्यापक हो रहा है, तू आपे गुर चेला है, आपे चेला रूप भी तू आप ही गुर। चेलों के विच भी सेवक के विच भी तेरी ही चेतन सत्ता है, तू सारे च व्यापक हो रहा है। गुरु रूप भी तू आप है, सेवक रूप भी आप है। इस तरह गुरु च दे तुझे त्याज, तू आप ही कृपा करके गुरु दे राही जीवां नूं अपने नाम की दात दिना है। गुरु की कृपा देना तेनू उत्ते आउंदे आ जीव जिन्हां ते तू आप कृपा करदा गुरु दे राही। जो तुद सेवा सो तू है हो वह, तुद सेवक पैज रखाई। हे परमात्मा, जिहड़े तेरा सिमरन करदे है गुरु दे राही, तेरी आराधना करदे है, सिमरन करदे है, वह तेनू जप जप के ते तेरा रूप हो जाते हैं, तो तू आप ही अपने उन्हां सेवकां की पैज रखदा है लोक परलोक विच। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाणो मानस देहा। हरी ते हरी दा सेवक च कोई फर्क रहिंदा नहीं है। इसे तरह हर हर जन दोई एक है, बिबचार कछना है। जल ते उज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। हरी ते हरी दा जन एक ही हो जाता, जिस तरह पानी च पानी मिल के एक हो जाता है। इस तरह ही परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जेड़े तेरू तेरी आराधना करते सिमरन करते हैं, जो तुझ सेवा है सो तू है हुए तेरा रूप हो जाते हैं। तो सेवक पैज रखाई, तू आप ही अपने सेवकों की पैज रखना रख्या करता है। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई। हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे दर ते सेवा भगती दे भंडार भरे हुए हैं, लेकिन जिन्ना ते तू आप कृपा करके गुरु दे राही जिन्ना नू ए अपने नाम दी ए भगती दे भंडार बख्शदा है। भंडार भरे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिहड़े तेरी रजा विच जिन्हां नूं तूं आप कृपा करके गुरु दे राही इह सेवा भगती दी दात बख्शदा, उही प्राप्त करदे हन। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। जिन्हां नूं सतगुरु जी कृपा कर दिंदे आ, परमात्मा वाहिगुरु दी प्रेमा भगती बख्श दिंदे आ, फिर भाई उह परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पा जांदे, चंगे लग जांदे हन। फिर सदा वास्ते उन्हां दी झोली च परमात्मा दे नाम दी दात पै जांदी है। उस परमात्मा वाहिगुरु दे नाम दे खजाने विच भाईवाल बन जांदे हन, उन्हां दी सांझ बन जांदी है। त्यों दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भै नदाना। खावहि खर्च हर आलम भाई, तोट ना विवध हो जाई। जिस तूं देह सोई जन पाए, होर निफल सब चतराई। लेकिन वह जो परमात्मा वाहिगुरु का नाम का खजाना है, वह भाई अपनी चतराइया के नाल सियाणप के नाल प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपनी कीतियां चतराइया सियाणपा सब निफल हो जाती हैं, व्यर्थ चल जाती हैं। हाँ, जिस तू दे सोई जन पै, जिन्हां नूं परमात्मा तू आप कृपा करके बख्श देना है, उही तेरे नाम के खजाने नूं पाउंदे हन। क्यों चतराई सियाणपा कितने काम ना आई है। ਤੁੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ।

स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुर, भई ये स्रोत है, ये सुरत दे सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये स्रोत है सुरत दे। अगर ये सुरत दे तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घट दें। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटती है, एक सैकंड दे घटती है। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द दे चलीन हो गया, जुड़ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक छिन दे चे निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। निमक निमक एक सैकंड है, एक चित जै एक छिन दे आयो काल फास के बीच न आयो। एक छिन एक निमक इन अत कथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा होवे, गुप अंधेरा होवे, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगन गए नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगन गए नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर। ते एक दम ही आज है, बाबा फरीद कहते ने आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजनिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है, मैं नाम हुण जपा फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल दो साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी, मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोर दा ते उह डॉक्टर नूं कहिंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा, कहिंदा छेती कर जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे ओले ओले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता, ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होके जीवन देन और निराश हो जाते ने भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ऐ दवाई ले लो ऐ दवाई ले लो, उन्हां दे अंदर निराशा है, रोग दिच जीण दी आदत बन गई, विकारां दिच जीण दा सुभाव बन गया, हुण ठीक होण दा ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पैदा, नहीं ठीक हो सकांगे, इहदे च जीवना पएगा। जैसे जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है हंकार दिच काम दिच क्रोध दिच लोभ दिच जीना पएगा, इहदा कोई इलाज नहीं, थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकदा, इह जीवन नूं छड्ड नहीं सकदे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਸੋਗ। ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਸੋਗ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੋ ਸੋਗ। ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮਨ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕੋਈ ਖੇਲ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਚ ਬੈਠੋ, ਖੇਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸੋਗ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੋਵਨ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੋਵਨ, ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है चाहे रूप है, तमाशा है खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां विच नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग देच ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नू जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नू जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है, इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने, पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते क्यों ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी ते वग रहा है। इच्छा पूरी करण विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी लिया है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहे है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाठ कितना गहरा है ए चौड़ी कितनी है ए गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनू उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है तृष्णालु है ए तृष्णालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इदा पाठ किन्ना चौड़ा है ए गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है ना गहराई नाप दे चाहुंदी है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर दिता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखिया है और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं एक भी नहीं होया गजब दी गल इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुई होन ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तों वड्डी होर मूर्ता केरी होवेगी इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे पक्की जिंदगी किसनों मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਲਵੋ 1.99 ਪਾਉਂਡ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.